बिनंती सुन प्रभु मेरे। देह नाम कर अपने चेरे, अपनी शरण राख प्रभु दाते। गुर प्रसाद किने घर ले जाते,

विसर नाही पूरण गुण तास तन सो विला जित दर्शन करना ओम बलहारी सतगुरु चरणा जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीव प्रभ नाम चे तेरे सुकहु टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए तनासरी महला अंत महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई जियो हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई जियो सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाइए जियो गुण गाए विगसै सदा अन दिन जा आप साचे पावए अहंकार हो मैं तजय माया सहज नाम समावए आप करता करे सोई आप दे तपाई है हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई है जियो अंदर साचा नेहो पूरे सतगुर जियो हो तिस सेवी दिन रात मैं कदे ना विसरै जियो कदे ना विसारी अन दिन समारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता एह मन तृपतै गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन बबेक बुद्ध बिचरै अंदर साचा नेहो पूरे सतगुरै सत संगत मिले वड भाग ता हर रस आवाए जियो आन दिन रहले बलाए ता सहज समावाए जियो सहज समावै ता हर मन भावै सदा अतीत बैरागी हलत भगत सोभा जग अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहां ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावै सत संगत मिले वड भाग ता हर रस आवै जियो दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोहया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहया जियो माया दुख मोहया हो मैं रोहया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे ते सचेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावै को सास न चालै उतर कलत्र माया धोया दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोहया जियो कर किरपा लेहो मिलाए महल हर पाया जियो सदा रहै कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावै ता हुक्म समावै हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रहै दिन राती सहजे नाम ते आया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावै कर किरपा लेहो मिलाए महल हर पावै जियो नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावै कर किरपा लेहो मिलाए महल हर पावै जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

शपति परे तेरे पंडारा, जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवां विसरै मर जाओ, आखणे औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलियै दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वडे आई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन करकै कीती रात। खासम विसारै ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सत गुर सत पुरखा।

प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरधा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपतासा है मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रास नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रास पाया मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्दम जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जंत उपाए ताक रिज को आगे कर तरया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर कल तरिया। जन नानक बल बल साध बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। राग आशा

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबेओ बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिहै सब बैरन को आज संगरिहै पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दय मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राख न हारे साहिब संत सहाये प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है काहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाध कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत चिटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशान घट घट के पट पट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तारत तब देह अपारा जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव ना पावत बेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद ना जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत पूज खान बहुर राज दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो संक्र इकठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उतपाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट तरै तत काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरहु ताके ताप तनक मह हरहु रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शवाय सकै ना कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा।

सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मानेओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद काहे हम एक ना जानेओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहेओ सब तुहे।

राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादहियां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दोता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सुवारणा सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो वे सारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तो दवासो कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वसत तजी नह जाई नित नित रख उरथारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पांजोआ तेरा कीता।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेको नानक मन माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पहर।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हां तों सिख पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दे दार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खाल।

हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत शाड बिखै बेखो खाई, माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की

पावन पंक्तियां गाओ, अठे पैर हाजर नाजर जानो। सतगुरु कह रहे नी जिवें मछली हर वेले पानी विच जिउंदियां जीवी पानी, रब ना करे जे पानी तो वखरा होना पै जाए ते तड़फन लग पैंदे। ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे, जिवें मछली दा पानी तो बगैर जीवन नहीं, तड़फना है, कल्पना है, हुण मौत आई, हुण मौत आई, ए अवस्था है। आखां जीवां विसरे मर जाए। सतगुरु कह रहे ने फिर उदाहरण जानवरां दी दे रहे ने, मीन पकर फांक्यो अर कट्यो रांद क्यो बहुमानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तो ना विसरियो। मछली नू फड़न वाला फड़ के लै गया, व्यापार करन वाले ने व्यापार कीता, भोजन करन वाले ने भोजन कीता। बाणी कह रही है कहंदे ने जिने भोजन कीता उहदी भी प्यास दी हद नहीं रही। हाय पानी हाय ज्योंदियां जी भी पानी, कहंदे ने शरीर दे टुकड़े हो गए फिर भी पानी। ज्यों परिवार पतंग दा दीपक बाजना होर सुजारे, पतंगा दीवे दी परिक्रमा करदा है, फिर चलिया गया, फिर आया, फिर चलिया गया, पर सड़क के सुआह हो गए। पर याद रखना महाराज उदाहरण दे रहे ने भी एक पासे दा प्यार है, पानी थोड़ा ही प्यार करदा है, दीवा थोड़ा ही प्यार करता है। सतगुरु ने केवल दा केवल सानू समझाया है, पर साडे ते दुनिया भी रंग इन्ने हैवी ने पता है, पर फिर वो खिंच लैंदे ने अपने नाल, फिर वो सानू अपने नाल जोड़ लैंदे ने। स्वामी के ग्रह ज्यों सदा स्वान, कुत्ते नू कह रहे ने प्रशादा मालक देवे ना देवे, स्वामी घर दे मालक नू, पर बूहा मल के बैठा होया याद आएगा मेरे मालक, प्रशादा मिलेगा, लेट हो जाएगा पर मिलेगा। स्वामी के ग्रह ज्यो सदा स्वान, तजत नहीं, नहीं तो साडी अरदास किते देरी हो जाए ते आपां टिकाणे लभण लग पैंदे किते होर चलीए। इंज महाराज कह रहे ने ऐसा प्यार होवे। 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब जी दे केवल सानू समझा रहे ने प्यारे हो, वे बंदे नू किवें ना किवें समझ आ जाए। 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब जी दे किते कुछ कह रहे ने, किते कुछ कह रहे ने, बस यही कह रहे ने अठे पैर, तू वेख स्वास भी तेरी मर्जी नाल नहीं चल रहे, ते उहदा शुकर करिए, हर वेले उहनू नाल रखिए।

गुर सेविया अहल सहज सुभाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए वैसे पुत खसम दी नूरे अरसो हो कुरस हो चटिया उदड़ते सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म

हम लावे आपन पाली। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाल है गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गौड़ी सुखमनी महला पंजवां सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद गुर ए नम है जुगाद गुर ए नम है सतगुर ए नम है श्री गुरुदेव ए नम है अष्टपदी। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरो जास विसंभर एक नाम जपत अगंत अनेक। वेद पुराण सिमरत सुधाखिर कीने राम नाम एक आखिर। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो। सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ विघ्न ना लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उधरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूरन आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभ जी बस है साध की रसना नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते। प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्ब के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरह तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरह बस हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग नानक सिमरन पूरा भाग। प्रभ कै सिमरन कारज पूरे प्रभ कै सिमरन कब हो ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी। प्रभ कै सिमरन निःचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार। सिमरह से जन जिन को प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए। हर सिमरन पए सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते। हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा हर सिमरन मह आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना काट।

अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाई जह महाप्यान दूत जम दल तह केवल नाम संग तेरा चल जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहि उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तर हर को नाम कोट पाप पर हर गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव हो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंध ना पर हर का नाम जपत निस्तर अनिक माया रंग तिख ना बुझावे हर का नाम जपत आघावे जेह मार्ग एहो जात इकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही अनिक बिघन जह आए संगार हर का नाम तत्काल उदार अनिक जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हौ मैला मल कब हो न तोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपोह मन रंग नानक पाइय साध कै संग जेह मार्ग के गने जाहे न कोसा हर का नाम उहां संग तोसा जेह पैंड महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को ना सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महाप्यान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहां त्रिखा मन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उधरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब पर ना भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नहीं वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर तन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर ना जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे और जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद्वस संत प्रताप दुरत सब नस संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछ अवर ना।

नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास करम त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, वर्त नेम कर बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपि सर थीवे, अगन माही होमत प्राण, कनिक असु हैवर भूम दान, न्यूली कर्म कर बहु आसन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो पी होम मैल ना जावे, हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान ना मन ते हुटै, सोच कर दिनस अर रात, मन की मैल ना तन ते जात, इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू ना बिख्या टरै, जल धोवै बहु देह अनीत, सुध कहा होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उधरे पतित बहुमूच, बहुत सियाणप जम का भौ व्यापै, अनेक जतन कर तृष्ण ना त्रापै, भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिझै, छूट सुनाही ऊभ पयाल, मोह व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जम डान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोला सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे, जे को आपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय साध गावे, जे को अपनी शोभा लोरै साध संग एह हो मैं छोरै, जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सूगनीय सब ते ऊंचा, जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन काट काट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, देखे सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन समदृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्तन को तन तेरो नाओ, निथावे को नाओ तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देव हो दान, करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जान हो आपे, अपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुम ते होए, नानक अवर ना जानस कोए, सर्व

सो प्रभ सदा समाल जिनके आतिस चीत रख नानक निभे नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चित पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अगन मह जिन्ह उबारिया बार व्यवस्था तुझ प्यार दूध पर जोवन भोजन सुख सूध बिरध पया ऊपर साक सैन मुख अपयाओ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लेहो तो नानक सीझै जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसह सुत प्रात मीत बनिता संगह सह जे प्रसाद पीवह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जे प्रसाद भोगह सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूढ़ अंध ब्यापे नानक काड लेहो प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तिस स्यों प्रीत ना करै गवार जाकी सेवा नव निध पावै ता स्यों मूढ़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसह बिसारै मुग्ध अजान सदा सदा एहो भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग औडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर करमाना जो होवन सो दूर पुराना छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेप उतारै तोए गर्धप प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतित बिकराल नानक काड लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा कर दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया छपस नाही कछ कर छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्याप लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरह अथाह जाके अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लेहो ओढ़ निभावै कहा बुझारत बूझै डोरा निस कहियै तो समझै पोरा कहा बिसन पद गावै गुंग जतन करै तो पी सुर भंग कह पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं होत ऊहा ओस गवन करतार करुणा मैं दीन बेंती कर नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै ना चीत जो बैराई ता स्यो पीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मनह प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोए ना जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ कर।

अष्टपदी। दस वस्तु लेपा छह पावे, एक वस्त कारण विखोट गवावे, एक पी ना दे दस पी हिरले, तो मूढ़ा कहो कहा करे, जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहु मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत साहु अपनी देरास, खात पीत बरत आनंद उलास, अपनी अमान कछ बहुर साहुले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास ना होवे। जिसकी बस्त तिस आगे रखे, प्रभ की आज्ञा मन माथा, उस ते चौगुन कर निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनेक पात माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओह बिन सह ओह मन पछतावे। जोदि सह सो चालन हार, लपट रहो तह अंध अंधार, बटाऊ स्यों जो लावे नेह, ताको हाथ न आवे कहे। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पत्र रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या भास लेत बिकारा, बिन बुझे मिथ्या सब पे, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाये, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यों कृपन के निरार्थ दाम, तन तन तेजन जेह कट बस्यो, हर नाउ नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुख हो गंढ लावत, जानन हर प्रभु पर बीन, बाहर पेख न काहू पीन, अवर उपदेश आप ना करै, आवत जावत जन में मरै, जिसके अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाना, अपना किया आप है माना, आप है आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव से अनप सगल ते रहत, सब कछ जाना आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहया समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जेह प्रसाद छत ही अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जेह प्रसाद सुगंध तन लाभ है, तिसको सिमरत परम गत पाव है, जेह प्रसाद बसह सुख मंदर, तिस है त्याय सदा मन अंदर, जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरोह तिस रसना, जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई है त्यावन जोग।
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵਹਿ ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਕਥ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਈ ਜੈ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾਵੀ ਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਖਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵਹਿ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵਲਾਵ ਹੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਭੂਖਣ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਹਸ ਅਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਚਿਤਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਿ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਿਖ ਹੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੁੱਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵ ਹੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨੋ ਬਿਸਾਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾ ਕੋ ਜਾਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸ ਹਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਓ ਰਾਚ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਇਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲਗਹਿ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪੁਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਕਥੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹੋ ਤਾਪ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਬਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨ ਆਈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋ ਚਰ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਊਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ
ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕਲੁਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਚਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਹੀ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪਬ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਾਟ ਘਾਟ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨ ਜਾਣ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਨਹਿ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਇਕ ਸਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਤਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸੁਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਧਾਖਿਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ,
ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक और तहर जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्स, पर त्रै रूप न पेखे नेत्र, साधकी टहल संत संग हेत, कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाना आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हर, मन की वासना मन ते टर, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिस्न की माया ते हुए पिन, कर्म करत हुए नेह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछय, केवल भगत कीर्तन संगराचय, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत ऊतम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन पर बोधा, राम नाम आत्म है सोधा, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवै, वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मह जान असूल, चहु वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वरना मह जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पास प्रेत मुगध पाथर को तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसन तन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपनी दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ता ईसाई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ, आपे करन कराउ जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग, पसरियो आप होए अनत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, श्लोक उस्तत कर हैं अनेक जन, अंत ना पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पए तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमह उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी शुरू होते, कई कोट आत्म ध्यान तार हैं, कई कोट कब का विचार हैं, कई कोट नवतन नाम त्याव हैं, नानक करते का अंत न पाव हैं, कई कोट पए अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर,
कई कोट पर दर्ब को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश प्रमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाना करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत तार, नानक जिस जिस पाव तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्शास्त, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रे सूकर मृगाच, सब ते नेरा सब हुते दूर, नानक आप अलिप्त रहया भारपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कालह थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे, कई कोट पय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहनते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग हैं सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत ना जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म परगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहार हैं एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीव है, अमर पय सद सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म रस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सास समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण करण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलहारण, जल थल महियल सोए अष्टपदी, कर्ण करावन कर्ण जोग, जो तिस पावै सोई हो, खिन महताप उथप नहारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे तार अतर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब मह रहया समाई, प्रभ पावै मानुक गत पावै, प्रभ पावै ता पाथर तरावै, प्रभ पावै बिन सास्ते राखै, प्रभ पावै ता हर गुण पाखै, प्रभ पावै ता पतित उधारै, आप करै अपन बीचारै, दुहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै विगसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुक ते क्या होए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत बिखिया मह रचै, जे जानत अपन आप बचै, पर में पूला दह दिस्तावै, निमक महे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मह नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु ना आवै, तिस सतकाल दह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा ना गन जगदीस, जियो पिंड सब तिसकी रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई फुन थियो, कबहू ऊच नीच मह बसै, कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्योहार, कबहू ऊब आकाश प्याल, कबहू बेता ब्रह्म बीचार, नानक आप मिलावनहार, कबहू नृत्य करै बहुपात, कबहू सोए रह दिन रात,
कबहु महाक्रोध बिकराल, कबहु सर्व की हो तरवाल, कबहु होए बह पड राजा, कबहु पेखारी नीच का साजा, कबहु अपकीर्त मह आवे, कबहु पला पला कहावे, ज्यो प्रभ राखै तिव ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहु होए पंडित करे बखियान, कबहु मोन तारी लावै ध्यान, कबहु तट तीर्थ स्नान, कबहु सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया, अनिक जोन परमै परमिया, नाना रूप ज्यो सौंगी दिखावै, जो प्रभावै तिवै नचावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहु साध संगत एहो पावै, उस स्थान ते बोहर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बस है पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल महिं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान, सलोक सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाना मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बोह जोन प्रमावै, तन भूम का जो करै गुमान, सो मूरख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानक इहा मुक्त आग सुख पावै, तनवंता होए करगर बावै, तृण समान कछ संग न जावै, बहुलस कर मानुक ऊपर करे आस, पल पीतरता का होए विनाश, सब ते आप जानै बलवंत, खिन मैं होए जाए पसमंत, किसे न बदै आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे कुआरी, गुर प्रसाद जा का मिटै अभिमान, सो जन नानक दरगह प्रवान, कोट कर्म करै हों तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे, अनिक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार, अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कहो कैसे गवै, आपस को जो भला कहावै, तिसै भलाई निकट न आवै, सर्व की रेन जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाना मुझ दे कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब यह जाना मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन मह फिरता, जब तार है कु बैरी मीत, तब लग निश्चल ना ही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूट, गुर प्रसाद नानक हो छूट, सहस खट्टे लख कोट तावै, त्रिपत ना आवै, माया पाचै पावै, अनिक भोग बिख्या के करै, नह त्रिपतावै, खप खप मरै, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब हु कै संग, बुझ देख कर विवेक, आप है एक आप है अनेक, मरै न बिन सह आवै न जाए, नानक सद ही रहया समाए, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचया सब कै साथ, आप कीनु अपन विस्तार, सब कछ उसका हो करना हार, उसते भिन्न कहो किछ होए, थान तनन तरे कै सोए, अपने चलत आप करण हार, को तक करै रंग अपार, मन मह आप मन अपनी माहे, नानक कीमत कहन न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने वखियानी, सच सच सच सब कीना, कोट मधे किने बिरलै चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेई बाणी, घट घट सुनी श्रवण बखियानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, सलोक संत सरन जो

ਸਪਸ਼ਟ ਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਔਰ ਜਾ ਘਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਤੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨਾ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਿ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨੀਚ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਵੇ ਭੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਨ ਨਾ ਪਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆਰ ਦੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਰਬ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਬਿਜੋਗ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮਹਿ ਦੋਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਏ ਮੋਖ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾਹੀਂ ਠਾਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਦ ਬੀਜ ਤੇ ਟੂਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੈ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ਜੋ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਪਣ ਬੀਜਾ ਪੇ ਹੀ ਖਾਹੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਉਬਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਓ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁਟੈ ਅਕੇਲਾ ਜਿਉਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਦੁਹੇਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕਾ ਤੁਰਹੀ ਪਇਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵਾਈਐ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੂਜੈ ਨਾ ਆਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਠ ਚੱਲੈ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਕੋਏ ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਿਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸਭ ਕਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋਥੀਆ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ ਤਜੋ ਹੋਸਿਆ ਨਪ ਸੁਰਜਨ ਹੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਭਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਘਾਏ ਬਹੁਰ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ ਮਾਨੁਕੈ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਕ ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਿਹ ਜੀਓ ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ੍ਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਊ ਜਲ ਮੱਥਾ ਬਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲਹਿ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ਤੁਤ ਕੀਓ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣ ਆਪ ਸੁਝੈ ਤਿਸਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग तेहो हर जन रहत आन दिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी खटी है जम की पासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह न लाग है दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजिया गुरु प्रसाद तत सब बूझिया जब देखो तब सब किछ मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल नह किछ जन्म नह किछ मर आपन चलित आप ही कर आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आप अनेक जुगत रस्ताप उथाप अविनाशी नाही किछ खंड तारण तार रहे हो ब्रह्मांड अलक अपे उपरक प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो स्वभावन सगल संसार उधर तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदारन प्रभ के सेवक दुख विसारन आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लाग है जिसनों कृपा करह बडपाग है नाम जपत पाव है विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किस कर सो प्रभ कह रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाय होवे सो होए करण हर पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहे सुमाए होए सुख निधान उन्हों बनाए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाकर सिमरन उधरिया नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जी आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे अरे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरा किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल घट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस तिसका दिया दर्भ है अत सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहता वै जे को होए बह दातार तिस देन हार जान गावार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थम है थमन त्यों गुर का शब्द मन है अस्थमन ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरह प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यों महा उद्यान मह मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाई है पुरब लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देवनहार अवर त्याग तू ते सह चितार जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिर है अजान कौन बस्त आई तेरा संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद सेती कर जाहे जिस वकर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हृदय मह तोल लाल खेप संत है संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कह सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए एहो वापार विरला वापार नानक ता कह सद बलिहार चरण साध के तोए तोए पियो अरप साध को अपना जियो साध की तूर करो इस नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनेक बिघंते साधु रख है हर गुण गाये अमृत रस चख है ओट गही संत है दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया मृतक को जीवाल नहार भूखे को देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका हो करने जोग तिस बिंदु सर होवा ना होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मल ए करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया
जाके मन गुर की परती तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिय तेहो लोए जाके हृदय एको होए सच करुणी सच ताकी रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्टि सच आकार सच वर्ता सच पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप नरेख न रंग किछ त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिसह बुझाय नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी अवनासी प्रभ मन महराख मानुक की तू प्रीत त्याग तिस्ते पर नहीं किछ पोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरनी पाओ नानक कह मने हो अनराओ मनसा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाके सर्व थोक सुनी है कर ताक राज महराज जोग मह जोगी तप मह तपी सरग्रस्त मह भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जन पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्यावह से तेह गुण मह जाकु परमाए जन्म मरे फिर आवह जाए ऊच नीच तिसके अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करह एक रंग नाना विदकीनो विस्तार प्रभ अवनासी एकंकार नाना चलित करे खिन माही पूरहे पूरन सब ठाए नाना विद करमंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब काट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगला आकार नाम के तारे पुरियां सब पवन नाम के संग उधरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रदान करतूत सत सत जाकी पाणी सतपुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कर हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोय नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जान अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करण हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जान किया नानक जो तिस भाव सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्मात जिन बूझया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाके संग तरह संसार जन का सेवक सोवट भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदा दर्शन सत सत पिखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सब तारी आपे गुण कारी शब्द सत सत प्रभ वक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर हृदय विश्वास प्रभाया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया पै ते निरपो होए बसाना जिसते उपजा तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन्न ना कहना जाई
बुझे बुझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पूजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रती ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाना संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तार नानक सो सेवक सा सा समार अपने जन का पर्दा ढाक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख है ताकि गत मित कोय न लाख है प्रभ के सेवक को न पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया नीकी कीरी महकल रख है पसम कर लश्कर कोट लाख है जिसका सास न काढ़त आप ता को रखत देकर हाथ मानस जतन करत बहु पात इसके कर्तव बिरथे जात मार न रख अवर न कोए सर्व जिया का रखा सोए काहे सोच कर हरे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत एह मन तन त्रपिय नाम रतंजन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्ट आया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखार नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नाम है नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदका बोलो जस जेह बादिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करह भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सुह रह समाये जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पछान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पहर प्रभ सह जूरे कहो नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेहे मन तन अपना तिन जन देहे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोका दाता तिसकी शरण सर्व सुख पाव है तिसके दर्श सब पाप मिटाव है अवर से अनप सगली चाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान ना हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन

अष्टपदी सतगुर सिख की कर प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिर गुर बचनी हर नाम उचर सतगुर सिख के बंधन काट गुर का सिख विकार ते हट सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन मह सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सद त्यावे मन बेचा सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसाप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बिसवे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मह जन जन मह पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सह सियानप लया न जाइये नानक ऐसा गुर वडभागी पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुन कर बचन कर्ण आघाने मन संत हुआ तंपतिया ने पूरा गुर अखियो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेख्या हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जिहवा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन ना पाई अनेक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरह सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जा कै मन प्रगटे गुण तास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया कह संग न ले मन मह रख हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक परम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठाड बरताई अंध भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंधेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहो चूका निरपह होए बसे सगल व्याध मनते कह नसे जिसका साथ इन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जस रमन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगा साध कह संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चल।

सरस्वती। संत जना मिलकर हो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत विसार हो, चरण कमल हृदय महवर तार हो। करन करन सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत, यह तन संचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस रख हो मन माही, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार कुंट उठता वह, सो तन हर सेवा ते पाव है, जिस सुख को नित बाछह मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस शोभा को करह पली करनी, सा शोभा पजहर की सरनी, अनेक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हरव खद लाए, सर्व निदान मह हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोध हो हर कह नाए, दह दिस तावत आवे ठाए, ताको विघन न लागे कोए, जा कह हृदय बसे हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, वह बिन सह पूर्ण हुए आस, भगत पाए आत्म परगास, स्थित कर जाए बस अविनाशी, कहो नानक काटी जम फांसी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरह सोका चोकाचा, आवागवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यो रतन जन्म का होए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमर शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंचत नानक फल पाए, संग न चालस तेरा तना, तू क्या लपटावे है मूरख मना, सोत मीत कुटुंब अर बनिता, इन ते कहो हो तुम कवन सनाथा, राज रंग माया विस्तार, इन ते कहो हो कवन छुटकार, असहस तीरथ असवारी, झूठा डंब झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बिगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह इयाने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल रखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विक जाहे, आप जपोह अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार पूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुन गाओ, गुन गावत तेरी उतर समैल, बिनस जाए हो मैं बिख फैल, ओहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावह सच तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख, एको जप एको सालाहि, एक सिमर एको मन आहि, एक उसके गुण गाओ अनंत, मंथन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप, अनेक विस्तार एक ते पये, कराद प्राचत गए मन तनंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता, सलोक फिर

अष्टपदी। जब अकार एहु कछ न दृष्टिता पापुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाध तब वैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सो कह किस व्यापत। जब अपन आप अपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किसोत परम। अपन खेल आप वर्ती जा नान करन हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंध मुक्त कह किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कह कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित छाए। जब अप है आप अपनी जो तर तब कवन निडर कवन कत डर। अपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। अपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो किस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किस है भूख कवन तृप्तावे। करन करावन करन हार नानक करते का नाहि सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला अप है परबीन तह वेद कतिव कहा कूचीन। जब अपन आप उड़तारा तो सगन अप सगन कहाँ बिचारा। जह अपन ऊंच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जन हो आप। जह अचल अचेद अपेद समाया उहां किस है व्यापत माया। आपस को आप है आदेश त्रिहु गुण का नाही परवेश। जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जह अपन आप पति हरा तह कौन कथ है कौन सुन न हरा। बहु बेअंत ऊचते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा। जह आप रचे ऊपर पंच अकार तेह गुण महकीनों विस्तार पापुन तह पई।

को, नरक को, स्वर्ग वंशावत, आल जाल माया जंजाल, होम है मोह परम पार, दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की ओ बखियान, अपन खेल आप कर देखे खेल संकोच, तो नानक एक है जह अभिगत भगत है, आप जह पसरह पासार, संत प्रताप दुह पाका, पह तनि उनकी शोभा अनुहू बनी, अप है कोत कर चोज, अप है रस भुग निर्जोग, जिस पावे तिस आपन नाई लावे, जिस पावे तिस खेल खेलावे, बेशुमार अथह अगंत अतुल, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोला, सलोक जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तन हार, नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टार, अष्टपदी आप कथ है आप सुन हार, आप है एक आप विस्तार, जहाँ तिस पावे ता श्रेष्ठ उपाय, अपने पाणे लय समाए, तुम ते पिन नहीं किश होए, अपन सूत सब जगत परोए, जाको प्रभ जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता, जी जंत्र सब ता कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राख है तिस कोय न मारे, सो मुआ जिस मनोह बिसारे, तिस तज अवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जा कै सब हाथ, अंतर बाहर जान हो साथ, गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार, पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होत के पाल, अपने कर्तव्य जान आप, अंतर जामी रहे हो ब्याप, प्रतपाल जीन बहुपात, जो जो रचियो सुत सहत आत, जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करह हर के गुण गाए, मान अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया, जन लागा हरे कहनाए, तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक को सेवा बन आई, हुकुम बूझ परम पद पाई, इसते ऊपर नहीं बीचार, जाके मन बसिया निरंकार, बंधन तोर पे निर्वैर, अंधन पूज है गुर के पैर, ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभा पह मेले, साध संग मिलकर हो आनंद, गुण गाव हो प्रभ परमानंद, राम नाम तत् करो बीचार, दुर्लभ देह का करो उदार, अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण का यह स्वाओ, आठ पहर प्रभ पे खो नेरा, मिटे ज्ञान बिनसै अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावहु, मन इच्छे नानक फल पावहु, हालत पलत दुइले हो सवार, राम नाम अंतर वरतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ते साच परीखिया, मन तन नाम जप होले विलाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माही, नानक बहर ना बह जाहे, तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उबरा राखन हार त्याहे, निरपौ जप सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राख तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिट अहंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन बेखत उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पर प्रधान, जिस मन बस सोत निहाल, ताके निकट नावत काल, अमर पहे अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया, सलोक ज्ञान अन्...

अष्टपदी। पूरे गुर का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरहु गोविंद, मन अंतर की उतरा चिंद, आस अनित त्याग हो तरंग, संत जना की तूर मान मंग, आप छोड़ बेंती करहो, साध संग अगन सागर तरहो, हर तन के पहर ले हो पंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उदार हो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चित वहो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल हे रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तर लोक कह निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाक मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाहद वाजा, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजा, प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उधरे तिन कै साथे, सरन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन,

राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभे खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहोत निधान। सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सबते ऊच पाए अस्थान, बहर न होवै आवन जान। हर तन खाट चले जन सोए,

ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगाश सबके मध्य सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग मह ताकि गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए परीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत।

दाता महंत हर बोल मना संत प्रसाद करणालय है अर्थालय है कलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व बारण है तर्त के तरण है जग के करण है मन मान है जग जान है सर्व पर है सर्व पर है सर्व कर है सर्वनाश है सर्वपाश है सर्वनाश है करणाकर्ण है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मंडस है खरखंडस है परते पर है करणाकर्ण है अजप अजप है थप थप है कर्ता कर्ता मृता मृता मृता मृत है करणाकृत है कर्ता कृत है तरणी तरित है हम तेश्वर है परमेश्वर है अकर्ता कृत है अमृता मृत है अजबका अजबा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम्बर है करणालय है नरपनायक है सर्वपायक है पवपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकल कृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हम नरतहर है परमात्म परमात्मा है सर्वात्मा है आत्मवास है जस के जस है पुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो यास यासे नो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगीय नामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगीय कामे कचरी छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजु अनास पास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अढ़ा अनाथे परमाते अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेख है अकर्मंग अपर्मंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमोसल प्रणामे समुसल प्रणासे अगुंजल अनामे समुसल निवासे निरकाम विभूते समुसल स्वरूपे कुकर्मुख प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करिमुल कुनंदा समुसल निवासी अजाय विभूते गजाय गनीमी हरियं करियं करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते चतर स्वयंभव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अभंगं विभूते एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं का प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख भरियो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा उते एक रति बन एक रति के माते मतंग जरे जर संग उतंग उसुरंग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारे पुजान के पूप बली बदन्यावत शीस न जात बिचारे ते पै तो कहाँ पै पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के पूपत कौन गना नहीं जात बिचारे श्रीपद श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दयादम दान सुसंजम नेम अनेक बसीख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पीख है पौनहार जती जतार सबैसु विचार हजार क देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलाएंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हलैना हलाएंगे थोर अरीन मरूर मवासन माते मतंगन मान बलाएंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बन त्याग जहान निदान चलाएंगे धीर पार बड़े बड़े आरे विचार सार की तार पछैया तोरत देश मलंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नुहार सुबातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक दवैया

दानव देव निध निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिता जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन कैबह पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न पर जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजन निराधव जौन त्रिलोक राज करेंगे कूट स्नान गजायद कदान अनेक स्वयंवर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सचिव पतंत फसाजम फास फरेंगे जे नर श्रीपत के प्रसें पग हे नर फेर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो लोचन मुंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ फिरो ले सात समुद्र लोग गए ऊपर लोग गवायो बास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो काहू ले पाहन पूज तरो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लखे वरा वाची समय काहू पछाओ को शीस नवायो कुबतान को पूजत है पास को मुर्तान को पूजन तायो कूर किरिया उर जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर किरिया उर जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाज बेनती चाहो पई हमरी करो भात दरचा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबह तुम काहो आप हाथ दह मोहि बचाओ सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबह करतारा मोर चानज करदा करया सब बैरन को वास संगर है पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाट कोई और न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबर है मरण काल का त्रास नवर है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करे और अच्छा राख ले मुई राख नहारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्ट के हंता तमो प्री चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताय हमारा जमन काल सब जग बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंते कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सब प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतन को पल मोह बाध कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पिशांत चीटी ते कुंचरा सूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पिशाना है कट कट के पट पट की जाना है जाऊत कर करा कर तारा प्रजा तरतव दे पारा जब आकर कर तो कब हूँ तुम मैं मल्क दे तर सब हूँ जीते बदन सिर सब तारा है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब हीते रहत निरालम जानत वेद भेद हर आलम रंग का निर्कार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूलू चार भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कृपा हन अनुमान महामूल गज भेद न जान महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिंत न पे आप अपनी बुद्ध जीती वर्णत भिन भिन तो तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के विजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यौरा कई कूपा अंडा जीरा से तजकीनी उत्पुज खान बहु रख दीनी कहूँ भूल राजा बैठा कहूँ सिमट प्यो शंकर कैठा सगरी सिर दिखाया चंभाव आज उगा श्रू स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारा सिख संघरो दुष्ट जित वठो तत्पाता सकल मलेश करो रण काता जी अस तु तब शरणी पराय तनके दुष्ट दुखित हवे मराय पुरख जौन पग परेते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कुल को एक बार त्या है ताके काल निकट नहीं आए हैं
रचा हुए ताएं सब काला दुष्ट अरिठ न तत्काला कृपा दृष्टन जाय न हरि हो ताके ताप तन कमो हरि हो रेत सत कर्मो सब होई दुष्या शव सक न कोई एक बार दिन तुम्हें संभारा काल पांच से ताय उबारा जन्नर नाम ते हारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण ते हारी आप हाथ दैले हो उबारी सर्ब ठौर मोह सहाय दुष्ट दोख तेले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता केलवे सकल देव को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्रीय तो जप है दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांचत फल पावे सोई दुख न सह बयाप को अड़ल सुनाय गुंग जो हिरा ऐसुर रसना पावई सुनाय मूल चित लाए चतुरता आवे दुख दद पौ निकट न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिंजे आज सहस पुन तीन कही जाए पादर सुदिय मीरा बारा तीर सतरो ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गए जब ते तुम रे अब ते को वाक तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण पुराण अनेक कह मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब बहो भेद कह हम एक न जाने श्री सुपान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब तो हे बुकाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ कर

मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूल, अखी सूतक वेखना पर त्रै पर धन रूप, कन्नी सूतक कन पै लाइत बारी खाहे, नानक हंसा आदमी।

गुरु ग्रीवनिवास अंतर्जामी सतगुरु जी तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जाग दी ज्योत हाजर हाजर कल युग दे बोहित आप जी दर की हाजरी पढ़दे हां बेअंत गुरसिख माई भाई वालों आप जी दी बाण दी सत्कार जो बेअंत माया पिता गुरदेव जी सारण सिखी दान प्रसाद दान चन्ना कुन्ना प्यार बख्शना खजाने पर पुरपने सो आओ गुरु प्यारे साथ संग जो कीर्तन की इंडिक सेवा प्रवान करनी हुई भुलना चुका दी खिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम सरवण करिए अज दे श्री मुखवाक दे विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए सिख पंथ दे विद्वान सत्कार योग ज्ञानी जसवीर सिंह जी उन्हां पासो अज दे श्री मुखवाक दे विचार सरवण करिए दस रूप फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

चरण कमल रख मन माही, तांकी शरण प्रयो नानक दास, जाते ऊपर को नहीं। वाहे गुरु साहिब जी तनसरी महला चौथा, हम अंधुले अंध बिखे बिखरते

जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलया केल केला ली। हर हर जपन जप लोच लोचनी, हर कृपा कर बनवाली।

साध हर मिलो हम साध जना पगरली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान सत्कार योग सत्संग जी, आप जी वडभागी हो। हर रोज दी तरह अमृत वेले तो शाहे शहनशाह शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पाक पवित्र हजूरी विच हाजरियां भरदियां पंथ प्रसिद्ध गुरु के कीर्तनीय हजूरी रागी जथे पासों संपूर्ण श्री आसा दीवार दा शब्द कीर्तन आप जी ने सरवन कीता। शब्द कीर्तन उपरंत जो पावन पवित्र वचना दा पाठ आप जी ने सरवन कीता, आज अमृत वेले तक ते प्रकाशमान होन वक्त धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कृपा कीती, जो गुरुदेव ने हुक्म बख्शे द मूल पाठ आप जी ने सरवन कीता। ए पाक बचन धन गुरु रामदास सचे पातशाह दे उच्चारण कीते राग तनासरी विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 667 अते 68 ते सुभायमान हन। आओ गुरु प्यारे कुछ समय लई जिथे अज दे हुकम दी विचार करिए उथे अज सारे संसार जगत नू तारन वाले ठारन वाले एक उस मार्ग दे पांधी बनाउन वाले जेड़ा मार्ग सिद्धा निरंकार तक जांदा है परमेश्वर विच अभेद करदा है। धन गुरु नानक सचे पातशाह दा अज

सगल समग्री तुम रह सूतर तुम ते हो ऐसो आज्ञा तुमरी गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाही। दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरते अमरदास। रामदासे हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण धियाइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नो नद्यावे ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी सब थाई हुए सहाय। दसम पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखणियां ते चढ़े आरियां नचराए गुरुद्वारां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म ने हारिया सिक्खी के सा स्वासन सिंह निभाई इतना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित्यावै चितावन का सदका सर्व सुख होए। जह जह खालसा जी साहब तह तह रिश्यारियाट देखते फतेह ब्रत के पाए पात की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसा जी के

परमेश्वर सिमरत पाई है मान रहाओ आवत जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग पतित पुनीत हो।

अवर ऊट सगली मुहि त्यागी, भोर भरम काटे प्रव सिमरत, ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी। तू अथाहुवत बडो स्वामी, कृपा सिंध पूरन रतनागी। नानक जाचक हर हर नाम मांगै, मस्तक आन धर्यो प्रभ पागी। कानड़ा महल्ला पंजवां, कुचिल कठोर कपट कामी, ज्यों जान है त्यों तार स्वामी। रहाओ तू

विषम विषम विषम ही पई है, लाल गुलाल रंगारे। कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। कानड़ा महल्ला पंजवा, ना जानी संतन प्रभ बिन्यान। ऊच नीच सब पेख समानु, मुख बकनो मन मान रहाओ। घट घट पूर रहे सुख सागर, पै भंजन मेरे प्राण। मने प्रगास

बिन सह मुह भरम दुख पी रह रहाओ, सिमरौ दिन रैन गुर के चरना, जत कत पेखो तुमरी सरना, संत प्रसाद हर के गुण गाया, गुर पे

रसना हर हर भोजन त्रिपतानी, अखियन काओ संतोख प्रभ दर्शन, रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम, कल मल दोख सगल मल हरसन, पावन धावन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन, शरण गही पूरन अविनाशी, आन उपाव थकत नहीं।

कोहकत कपट खपट खल खरजत गरजत, कोहकत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनिक बरिया रहाओ। अहंग मत अन रत कुमित हित, प्रीतम पेखत भ्रमत लाख गरिया। अनित व्यवहार अचार विदहीनत, मम मद मात कोप जरिया। करुण कृपाल गोपाल दीन बंध, नानक उधार।

हेवत दू जल हेवत भूख अरनंगा पूजा अचार करत में लंगा चकर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठ निग्रह अत रहत बिटंगा हो रोग ब्यापै चूकै ना भंगा काम क्रोध अत तृष्ण जरंगा सो मुख

रहाउ नैन तिपते दर्श फेक जस तोख सुनत करन प्राण नाथ अनाथ दाते दीन गोबिंद शरण आत पूर्ण दुख विनाशन।

रहाओ। कनिक मंदर पाठ सेज सखी, बोहे नाहे इन स्यौतात, मुक्त लाल अनिक भोग, बिन नाम नानक हाथ। रूखो भोजन भूम सैन, सखी प्रैसंग सूख बिहात। कानड़ा महला पंजवा, आहंग तोरो मुख जोरो, गुर गुर करत मन लोरो, प्रै प्रीत प्यारो मोरो। रहाओ

कसी निजी आसन ऊंद कमल बिग सोरो छुटकी होमे सोरो गायो री गायो प्रभ नानक गुनी गहेरो। कानड़ा महला पंजवा घर नौवा तांते जाप मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गाखरो मोह मगन।

हर गुण निते सुख मोर। ईट पूत नाम पूरन निरखत रिद खोर, संत सरन तरन नानक बिन सेओ दुख।

जात सदा सदा सदा सदा काल है। मान मान मान त्याग मृत मृत निकट निकट सदा है। हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनहो रे मूड बिन भजन भजन भजन

तिवै सुख पावै, सतगुर सेव समावै गुर हाउ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावै गु, अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावै किछ ना सुखावै गु, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढ़ावै गु, सतगुर बाणी पुरख परखोतम, बाणी स्यों चित लावै गु, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवै गु, तै अनहत धुनी बाजह नित बाजह।

माया पटल पटल है पारी, कर घूमन घेर कुलावै गो। पाप विकार मनूर सब पारे, बिख दुत्तर तरयो न जावै गो। भयो बैराग पौ बैराग भया है बोहित, गुर खेवट शब्द तरावै गो। राम नाम हर पेटी है, हर राम मैं

लग शब्द गुरु हर पावै गो, संगत संत मिलो सत संगत, मिल संगत हर रस आवै गो। बिन संगत कर्म करै अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावै गो। भगत जना के हर रखवारे, जन हर

जो निंदा दुष्ट करह भगता की, हर नाखस ज्यों पच जावै गू। ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा, तप तापन पूज करावै गू। जो जो भगत होए सो पूजहो, परमन परम चुकावै गू। जात न जात देख मत परम हूं, सुख जनक पगी लग त्यावै गू। जूठन जूठ पई सिर उपर, खिन मनुआ तिल ना डुलावै गू। जनक जनक बैठे सिंघासन,

ज्यों सत संगत तरियो जुलाहू, संत जना मन भावै गू। खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ ते आवै गू। सतगुर बचन बचन है सतगुर, पादर मुक्त जना वै गू। सासन सास सास बल पाई है, निःसासन नाम।

0: मैं सतगुर भस्म लगावै गू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दतार जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है, जो निता प्रति समुची मानवता के भले वास्ते पावन स्थाना ते श्री सहज पाठ की लड़ी चल रही है। उस तरतीब विच अज आपां ने सतगुरां दी अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ सरवण कीते हन। संगतां ने घरां विच बैठ के नाल कीते हन। गुरु कृपा करे सभनां दी हाजरी दर प्रवान कर लैण। सभनां नूं दरों करो नामदान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला। सतगुरु जी बख्शिश करके निवाजन गाव्या सुनिया सतगुरु जी थाएं पाउण। अगाध बोध बाणी नूं पढ़दिआं बेअंत बेअंत फुल्लां हो गईआं हन। आप संगत कृपालू सतगुरु जी बख्शी योग ने बख्श लैणगे। आओ विशेष कीर्तन हाजरी अज होवेगी 10 बजे तो लैके 11 बजे तक, क्योंकि अज साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का ज्योति जोत दिवस है। अज के दिहाड़े धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी 1539 ईस्वी में श्री करतारपुर साहब जी की पावन पवित्र धरती से, जो गुरु साहब जी ने अपने जीवन हयाती के अखीरले समय श्री करतारपुर साहब बैठ करके आप हथी किरत की बेअंत संगतां नूं जोड़िया, जिस बाबत भाई गुरदास जी ने बचन किए हैं कि दतार पिता महाराज ने पैर संसारी कपड़े भाव संसार की प्रवृत्ति करन वाली बिरती नूं धारण करके श्री करतारपुर साहब बेअंत समां दतार पिता महाराज ने नाम तो टुटे हुए परमेश्वर तो टुटे हुए लोगों नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल जोड़िया। इत्थे ही साहिब सतगुरु धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दतार पिता जी पहली वारी सतगुरु जी नूं मिलन वास्ते आए 1532 ईस्वी दे अंदर, ते उस तों बाद गुरदेव पिता महाराज जी दे चरणां दे भौरे ही बन गए। लगातार 7 साल सतगुरां दे दर घर की सेवा कीती। 1539 ईस्वी नूं साहिब सतगुरु दतार पिता महाराज जी ने अपना शारीरिक चोला जदों त्यागया, उस तों पहलां समुची संगत नूं श्री करतारपुर साहिब विच संबोधन कीता सी कि मेरा वासा ना मड़ी ना गोर गुरु अंगद के हिरदय माहे। कि मेरे वासे नूं इह नहीं समझना भी किसी मड़ी नूं मेरी मड़ी समझ के पूजन लग जाना है, कोई मेरी गोर बना देनी है, मेरी पूजा शब्द की जे पूजा करनी है, ते अज तों बाद मेरा वासा गुरु अंगद के हिरदय माहे, भाव गुरु अंगद का हिरदा मेरा हिरदा होएगा। सो अज तों बाद श्री गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं अपना गुरु जानना है। सतगुरां ने आप गुरियाई का ताज बख्शिश किया, गुरियाई दिती, आप परिक्रमा करके सतगुरां ने नतमस्तक होए ते सारी करतारपुर साहब की संगत सतगुरां दे चरणां विच नतमस्तक होई। ये गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जगत संसार विच चल रही बहुत लंबे समय तो जिहड़ी फिरती सी कि जेड़ा गुरु है वह गुरु ही रहिंदा है, चेला चेला रहिंदा है, कदी गुरु ने अपने चेले के चरणों में चरणों पर हाथ नहीं लाया सी, पर गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी के चरणों पर आप सतगुरां ने मत्था टेकिया। भाई बलवंड जी भाई सत्ता जी ने बचन किए सन कि उल्टी गंग वहाए होन, भाव ये उल्टा काम लोगों तो उल्टा काम सीधा सी, पर संसार के जिहड़े लोग जो काम लंबे समय तो उल्टा करते हैं उन्होंने सीधा कहन लग जाते हैं, तो जे कोई सीधा कार्य करे उन्होंने पुट्ठा कहन लग जाते हैं। सो ये मुहावरा वरत्या उल्टी गंग वहाए ओन दुनियाई आख्या के ओन, कि यह की कर दिता गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने। दतार पिता महाराज जी ने 1539 ईस्वी विच गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने गुरियाई बख्श के आप सतगुरु जी करतारपुर अपने शरीर नूं त्याग के सदा लई गुरु अंगद दे हिरदे विच शब्द दे विच सतगुरु जी समाउंदे सन। सो उन्हां दे पावन ज्योति जोत दिवस नूं मुख रखदे आं, अज कीर्तन दी विशेष हाजरी रखी गई है भाई साहिब भाई हरप्रीत सिंह जी अते उन्हां दा जथा आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन नाल जोड़ेगा जी। प्यार सिर सरवण करिए भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: श्री वाहिगुरु।

गौड़ी महल्ला चौथा जो जी मेरे गोविंदा जो जी मेरे प्यारिया हर प्रभ मेरा जो जी जियो हर आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा हर आपे गोपी खोजी जियो हर आपे सब कट भोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया भोगी जियो

आपे जगत अपायता मेरे गोविंदा। अरे आप खेले बहुरंगी जियो इक ना भोग पुगायदा मेरे गोविंदा। एक नगन फिरे नंग नंगी जियो आपे जगत उपायदा मेरे गोविंदा। हर दान देवे सब मंगी जियो भगत भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा। हर कथा मंग है हर चंगी जियो हर आपे भगत कराएदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जियो आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। रव रिहा नहीं दूरी जियो हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रिहा पर पूरी जियो हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेख आप हदूरी जियो हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यो वाजे जियो हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुरु सबदी हर प्रभ गाजे जियो आपे शरण पवाएदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजे जियो बड़ भागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्धि काजे जियो गौड़ी महला गौड़ी माज महला चौथा मैं हर नाम है हर बिरहो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा

फिर पहाड़ न पव जल फेरे जियो क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जियो हर मिल हो संत जियो मन लगा पाओ जियो गुर सब दी पाई हर प्रीतम राओ जियो बडभागी जपनाओ जियो मेरे मन तन बडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो हर मेल हो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो सतगुर मत नाम सदा परगासा जियो जन नानक पुरड़ी मन आसा जियो गौड़ी माज महला चौथा मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो मन अंदर अमृत गुरमत हर लीवा जियो मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा पीवा जियो हर पाए पायड़ा मन जीवा जियो मेरा मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हो नाम बिठो कुर्बान जियो हो हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नाम मैं नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहो लगाई जियो गुर सरदा पूरी अमृत मुख पाई जियो हर हो दयाल हर नाम त्याई जियो जन नानक हर रस पाई जियो महला पंजमा राग गौड़ी ग्वारी चौपदे एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद कन बिद कुशल होत मेरे पाई क्यों पाये हर राम सहाई रहाओ कुशल नगर है मेरी सब माया उच्चे मंदर सुंदर छाया झूठे लालच जन्म गवाया हस्ती कोड़े देख बिगासा लश्कर जोड़े नेब खवासा गल जेवड़ी हो मैं कह के फासा राज कमावे दह दिस सारी माणे रंग भोग बहनारी जो नरपत सुपना पेखारी एक कुशल मुँह को सत गुरु बताया हर जो किछ करे सो हर क्या भगता पाया जन नानक हो मैं मार समाया इन विद कुशल होत मेरे पाई यूं पाइये हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारी महला पंजमा क्यों पर परमिये भ्रम किसका होई जा जल थल महियल रविया सोई गुरमुख उबरे मन मुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुँचन हारा रहाओ सब मैं वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किछ जाने जो वर्तनता मन मुख मुवे जन दूजी प्यासा वह जोनी पवे तुर किरत लिख्यासा जैसा बीज है तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदरी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूरन आसा गौड़ी ग्वार रे महला पंजमा कई जन्म पै कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म है वर वृख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया
ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ਰਹਾਉ। ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਸੈਲ ਗਿਰ ਕਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰ ਉਪਾਇਆ, ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤ, ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਝੂਠ ਅਭਿਮਾਨ, ਜੀਵਤ ਮਰਹਿ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਇਆ।

कह नानक हर हर गुण गाए। गौड़ी ग्वारी महला पंजमा कर्म भूम मह बोहो नाम। पूरन हुए तुम्हारा काम फल पाव है मिटे जम त्रास। नित गाव है हर हर गुण जास। हर हर नाम अंतर उरतार सीगर कारज लिहो सवार। रहाओ अपने प्रभ से हो सावधान।

रहाओ। गुरु का वचन अटल अछेद, गुर के वचन कटे प्रम भेद। गुर का वचन कतहो ना जाए, गुर का वचन हर के गुण गाए। गुर का वचन जिया के कै साथ, गुर का वचन अनाथ को नाथ। गुर का वचन नरक ना पवै, गुर का वचन रसना अमृत रवै। गुर का वचन प्रगट संसार, गुर का वचन न आवै हार। जिस जन होए आप कृपाल, नानक।

रतन, गर्भ में राख्या जिन कर जतन, जिन दीनी सो बावड़ियाई, तिस प्रभ को आठ पहर तिहाई, रम्या रेन साध जन पावो, गुर मिल अपना खसम त्यावो, रहाओ जिन कीता मूड़ ते बत्ता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस पर साद नवै निद पाई, सो प्रभ मानते विसरत नाही, जिन दिया न थावे कौथान,

सा जिस प्रसाद माया सिल्क काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कह नानक इस्ते किछ नाही।

संग कर बाहर तेरा सद संग रहाओ तिसकी टेक मने मैं राख गुर का शब्द अमृत रस चाख अवर जतन कहो कौन काज कर कृपा राखे आप लाज क्या मानुख कहो क्या जोर झूठा माया का सब सोर करण करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी सर्व सुखा सुख साचाए हो गुर उपदेश मनै महले हो जा को राम नाम लिव लागी कहो नानक सो तन बड़ पागी गौड़ी ग्वारि महला पंजमा सुन हर कथा उतारी मैल महापनीत पै सुख सैल बड़े पाग पाया साध संग पार ब्रह्म सो लागो रंग हर हर नाम जपत जन तार्यो

विख गए, सर्व निदान पेखे मन माहे, अब टूटन काहे को जाहे, प्रभ अपने जब पै दयाल, पूरन होई सेवक काल, बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुण तास, एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया, गौरी ग्वारी महला पांचवा, अगले मुए से पाछे परे, जो उभरे से बंद लक खरे, जह तंदे में उए लपटाए, तिनते दुगन डिड़ी उनमाए, ओ बेला कछ चीत न आवे, बिंस जाए ताहू लपटावे रहाओ, आशा बंदी मूरख देहे, काम क्रोध लपट्यो असनेहे, सर ऊपर ठाडो धर्म।

अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख बखाने, जित जित लाभ है तित तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना।

पांजमा अनेक जतन नहीं होत छुटारा बहुत स्याणप आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत।

अस डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिसे आप दिवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द तह नानक नसे। गौड़ी गौड़ी ग्वार री महला पंजमा, बहुत दर्ब कर मन ना अगाना। अनेक रूप देख नहा पति आना, उतर कलत्तर उर्जो जान मेरी। ओह बिनसे ओए पसमै तेरी, बिन हर भजन देखो बिल लाते। त्रिग तन त्रिग तन माया संगरा ते रहाओ, ज्यो बिगारी कैसर दीजे दाम। ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम, जो सुपने हुए बैसत राजा। नेत्र पसारे ता निरारथ काजा, जो राखा खेत ऊपर पराए। खेत खसम का राखा उठ जाए, उस खेत कारण राखा कड़े। तिसके पाले कछु न पड़े, जिसका राज तिसे का सपना। जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा, आप बिनाहे आप करे रास। नानक प्रभ आ गए अरदास। गौड़ी ग्वार री महला पांजमा, बहु रंग माया बहु बिद पेखी। कलम कागद स्यान पलेखी, महर मलूक हुए देख्या खान। ताते नाही मंत्र तान, सो सुख मो को संत बतावो। तृष्णा बुझे मन तृप्ता भो रहाओ। अस पवन हस्त असवारी, चोवा चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाट

चैन की लीला, मन ना सहेला पर पंच हीला, कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख एहो आनंद लहा, साध संग हर कीर्तन गाइए, कहो नानक बड़ पागी पाइए, जाके हर तन सोई सहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाओ, गौड़ी ग्वारी महला पांजमा, प्राणी जाने एहो तन मेरा, बहर बहर ओआहो ओआहु लपटेरा, पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाइये राम के दासा, कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तरे एह माए रहाओ, जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो बिखे समाने, जाने नाही जीत अरहार एहो विलेवा।

ते बंधन छुटे तो कृपा ते हमें टूटे। तुम लाभ हो तो लाग है सेव, हम ते कछु न होवे देव। रहाओ

उन वर्तन तृप्त अकावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपूरे की सरनी परे रहाओ।

बिहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हरख सोग दो हूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग अर जुगते दिस है सब मह सब ते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान धरते संतन की महिमा कवन बखान्यो अगाध बोध तिच मित नहीं जान्यो पार ब्रह्म मोहे कृपा कीजे तूर संतन की नानक दीजे गौड़ी ग्वार री महल्ला पांजमा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम

रहाओ, जो तुम राखो तिभी रहना, जो तुम कहो सोई मुहे करना, जह पेखो तहा तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना।

मानताने अंतर तुही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी ग्वारी महला पंजमा, व्यापत हरख सोग विस्थार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत तन निर्तन पेख सोबा, मूल व्याधि व्यापस लोबा, माया व्यापत बहु प्रकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी। रहाओ व्यापत है बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त कोड़े अरवस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत पूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल सीगार, पांच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत गिरसत व्यापत उदासा, आचार विहार व्यापत एह जात, सब किछ व्यापत बिन हर।

सजाति मूसन हार पंच बटवारे। सुने नगर परे ठग हारे उनते राखे बाप न माई उनते राखे मीत न पाई। दरब सियाणप न ओए रहते साध संग ओए।

सर्व व्यापत पूरन तनी जाति सोबा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा टहे, जिस सिमरत जम किछु न कहे। जिस सिमरत होत सुके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा

संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मह इह हमरी जिंद, कृपा निद कृपाल त्यावो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को

दरद बिन से पै परम आवण जान रखे कर कर्म देखे बोले सुने सब आप सदा संग ताको मन जाप संत प्रसाद।

कह नानक जा कहु हो कृपाल, तिस जन की सब पूरन काल। गौड़ी ग्वारी महला पंजमा, बंधन तोड़ बुलावे राम। मन में लागे साच ध्यान मिठै।

पार ब्रह्म पशाणा जन ऊपर प्रभ पै दयाल। जन की टेक एक गोपाल, एक कालिव एको मन पाओ।

नानक का प्रभु अपर अपारा गौड़ी ग्वारेरी महल्ला पंजमा जिस मन वसे तुरे तरे जन सोए जाके कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापे अमृत नाम रत।

जगतपाल अगम अगोचर सदा बेअंता सिमर मना पूरे गुरमंता जाति सेवा सर्व निदान।

कर कृपा प्रभ अंतर जामी, सुख निदान हर अलख स्वामी, जिया जंत तेरी शरणाई, नानक नाम मिले वडियाई। गौड़ी ग्वारेरी महल्ला पांजमा, जिया जुगत

देखाओ जिन तारे बहुत हरण आगास जाति जोत जिय परगास जाति बक्स न मिटै कोए सिमर सिमर।

जागा अमृत गुण उचरै प्रभ बाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सहज सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया वहा पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पहुँच पुन पुनः चार हर हर नाम जी प्राण।

हार तन खट्यो जाका नहीं सुमार, जिसे परापत तिस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे। गौड़ी ग्वारे महल्ला पंजमा।

जाहे बिकार सिमरत राम नाही जम मार धर्म राय के दूत न जो है माया मगन न कछु है मोह है उधर आप तरह संसार राम नाम जप एकंकार आप कमाऊ अवरा उपदेश।

पांचवा चौपदे दो पदे एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस स्यो मन रचना। कहो गुसाई मिल के हे, जो बिबरजत तिस स्यो नेह रहाओ। झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे नाराती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीता

अव्यतिचर पुग है पोग जल न पाय राम स्नेही कृत संजोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल पा जाय प्रिय संग न पावे बहु जो

तन लाल जाका कछु ना मोल, परे पंडार अखट अतोल, खाव है खर्च है राल मिल पाई, तोट न आवे बद दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए,

सतगुरु अपने को बलिहारे छोड़ न जाई सर पर तारे, रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम, बुरा भला कोई न कही जाए छोड़ मान हर चरण गही जाए, कहो नानक गुरु मंत्र।

सिंध चोलागी दुख दर्द प्रमता का पागी रहाओ जाको रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जाका कहया दरगह चलै सो किस को नदर ले आवे तले जाका सब

साधो कवन गुन जो तुझ लै गावो कवन बोल पार भ्रमरी जावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी कराओ कवन सो विद जत पव जल तरो कवन तप जत तपिया होए कवन सो नाम हो मैं मलख होए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल।

आपन नाम सतगुर ते पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप नाम आई। सोयना रूपा फुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुर बख्स मिलाया, तिसका सब किछ जिसका हर राया। गौड़ी महला पांजमा गुर के चरण ऊपर।

मर न जाही जिना बिसरत राम। नाम बिहून जीवन कौन काम रहाओ, खात पीत खेल।

करण हार सद बसह दूरा कह नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजमा संत की धूर मिटे अग कोट संत प्रसाद।

सब कामा, हर की भगत जन्म परवान, गुर कृपा ते नाम बखान, कह नानक सो जन परवान, जाकर देव से भगवान। गौड़ी महला पंजमा

रहाओ। मन है कमावे मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कत है न डोले। जाके हर तन सो सच साहो, गुरु पूरे कर दीनो विसाहो। जीवन पुरख मिलिया हर राया, कह नानक परम।

नाम बढ़ाई जन सोपा पाए, कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ। नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान, हर का नाम जन को तारे सास।

रहाउ। हर कीर्तन सुनाए हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। हर की टहल करत जन सो है, ताको माया अगन न पूहे, मन तन मुख है।

कौड़ी महला पंजमा राख लिया गुरु पूरे आप मन मुख को लागो संताप गुरु गुरु जप नीत हमारे मुख उज्जल हो है दरबारे रहाओ गुर के चरण हृदय वसाए

नेह फल मानुख जपे नहीं नाम, कह नानक जा को पै दयाला, साध संग मिल भजे गोपाला। गौड़ी महला पांजमा, कल कलेस गुर शब्द निवारे, आवणी जान रहे सुख सारे। पै बिन से निरपो हर त्याया,

सास सास प्रभ मने समाले सोतन संचो जो चाले नाले तिसे परापत जिस मस्तक पाग कह नानक ताकी चरणी लाग। गौड़ी महल्ला पांजमा सुके हरे किए खिन माहे अमृत दृष्ट।

गुर मिले नानक ते जन सो फल फले गौड़ी महला पंजमा ताप गए पाई प्रभ सांत शीतल पै कीनी प्रभ दात प्रभ कृपा ते पै सहेले जन्म।

सहज सुभाए बोले हर बाणी, आठ पहरे प्रभ सिमरो प्राणी, दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पांचवा, भले दिनस भले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओह बेला को हो बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ रहाओ। सफल मूरत सफल ओह करी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओह मा

चाहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन भगवंत नाही अन कोय। मारे राख एको सोए रहाओ, गुरु के चरण हृदय उरतार, अगन सागर जप उतर है पार, गर मूरत स्यो लाए ध्यान।

तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए। रहाओ तुम मानव से तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पो पागे। पार ब्रह्म अप्रम पर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पांजमा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम बिहून सुने से मुखा। हर हर नाम जपो नित प्राणी।

मेल साधु हर नाम ते आई रहो दुलब देहे होई परवान सतगुर ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग पै परम मिटाया।

बरहाउ चरण कमल हृदय उर तारी मन तन धन गुर प्राण अधारी सफल जन्म होवे परवान गुर पार ब्रह्म निकट कर जान संत तूर पाये बड़ पागी नानक गुर पेट तहर स्यो लिवलागी गौड़ी महला पांजमा करे दोह कर्म दिखावे होर राम की दरगह बादा चोर राम रमे सोई रामाणा जल थल मैयल एक समाणा रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सना।

राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंधे सार हाओ। साध संग कछु पौ न प्राती, गुण गोपाल गाई है दिन राती। कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट। कह नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जासती है जननीत। गौड़ी महला।

लागे गुर की पाई। सुख सहज शांत आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा। राम रास साध संग खाटी, कह नानक प्रभ अपदा काटी। गौड़ी महला पंजमा, हर सिमरत सब मिठे कलेस। चरण कमल मन मह परवेश, उचरो राम नाम लखबारी। अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी, रहाओ सुख सहज रस महा आनंद।

खसम बिसार आन कमला गह कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोपा दास सलाम करत कत सोबा अमृत रस खावे खान पान अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तिसे

सगल तीर्थ मजन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बांचत सगले फल पाई।

सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाते बिरथा कोए ना होए रहाओ। अपने स्वाद अपने स्वाय हृदय ले तारिया, दुख दर्द रोग सग

नाथ बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा, गौड़ी महल्ला पांचवा, कोट विघ्न रेखन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस अमृत गुणतास, जप हर

राज सब परम भजियो पार ब्रह्म कह नानक अटल एहो धर्म गौड़ी महला पंजमा कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमन तरण पै सागर सरण सूर फारे जम कागर रहाओ

सदा सदा सिमरू प्रभ स्वामी, मिल नानक हर अंतर जामी। गौड़ी महला पांजमा, आठ पहर संगी बटवारे, कर कृपा प्रभ लय निवारे। ऐसा हर रस रमो।

0: उकत फल पाहे उकत ज्ञान इससे कछु नाहे।
1: कृपा नानक बोलिया गौड़ी पहला पानी मा ग्रुप पा दो ग्रुप 196 थाती पाई हर को नाम विचर संसार पूर्ण सब काम बड़भागी हर कीर्तन गाइए पाप राम तू देह सुपाइये रहाओ हर के चरण हृदय उर धार पव सागर चढ़ उतर पार साधु संग करो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख न होए प्रेम भगत पंच गुणी निदान नानक दरगह पाइये मान गौड़ी महला पंजवां जल थल मैयर पूरन हरमीत भ्रम बिंस गए गुण नीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जाके सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का हुआ नास आसा मान तान धन एक साचे साहे की मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे देहात गौड़ी महला पंजवां हर हर नाम मजन कर सूचे कोट ग्रहण पन फल ऊचे रहो हर के चन हृदय मैं बसै जन्म जन्म के किल बिक नसै साध संकीर्तन फल पाया जम का मार्ग दिष्ट न आया मन वच क्रम गोविंद आधार ताते छोटे बिक संसार कर किरखा प्रभ की नो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवां पौसर नाई जन हर जाते मन तन शीतल चरण हर राते पै पंजन प्रभ मन नव साही डरपत डरबत जन्म बहुत जाही रहाओ जाके हृदय वस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास ग्रास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक एक कौड़ी महला पंजवां।

जीरे उला नाम का अवर जिकर न करावणो तिन मैं पोहा जाम का रहाऊ अवर जतन नहीं पाइये बड़े भाग हर त्याइये लाख हिकमती जानिए आगे तिल नहीं मानिए अहमद कर कमावने ग्रह बाल डीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नानक नाम साधु संग मिले गौड़ी महला पंजमा बार न बलिहार न लखबरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहो करन करावर तू ही एक जी जंत की तू ही टेक राजोवन प्रभ तू तनी तू निर्गुण तू सरगुणी इहा उहा तुम रखे गुर कृपा ता को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तू ही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर अराधिये संत संग हर मन वसे परम मोह भौ साधिये रहो वेद प्राण सिमरत भने सब ऊंच बिराजत जन सुने सगल स्थान पै भीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे बल बुद्ध सियान पहो मै रही हर साध सर नानक कही गौड़ी महला पंजमा मन राम नाम गुण गाइये नीत नीत हर सेविये सास सास हर त्याइये रहो संत संग हर मन वसे दुख दद अनेरा परम नसे संत प्रसाद हर जापिये सोजन दुख न व्यापिये जाको गुर हर मंत्र दे सो उभरिया माया अगन ते नानको प्रभ मिया कर मेरे मंत्र वासे नाम हर कौड़ी महला पंजवा रसना जपिए एक नाम इहां सुख आनंद कना आगे।

वचनम अमोल कपायो व्यर्था कहा गवायो रहाओ। पतत पनीत दीन बंद हर सरन तुहार तुम आओ, गज को त्रास मिटो जैसे मृत तुम काहे बिसरायो। ताज अभिमान मोह माया फुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त पंथ है गुरमुख होय तुम पावो। कौड़ी महला नौमा कोई माई भूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मकसन कर्म निखन हर के गुण गावे रहो। दुर्लभ दे पाई मानस की व्यर्था जन्म सरावे, माया मोह संकट बनता सोर उपजावे। अंतरबास सदा संग प्रप्त स्यो ने ना लावे, नानक मुक्त है तुम माने जय कट राम समावे। कौड़ी महला नौवा साधो राम शरण बिसरामा, वेद प्राण पढ़ कोए कुन सिमरे हर को नामा राव। लोभ बो माया ममता फन ओ बिखन की सेवा, हर शोक पर से जय नायन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिख है सबको, कंचन पैसा उस्त तनिंदा ए समझा के, लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख के बादे जय नाहन तिम से जानो ज्ञानी, नानक मुक्त है तुम मानो एह विद को जो प्राणी। कौड़ी महला नौवा मन रे कहा पे हो है बौरा, एन से औध कटे नहीं जाने प्यो लोभ संग हो रा राओ। जो तन तो अपने घर माने और सुंद गृह नारी, इनमें किछ तेर हो रे नाहन देखो सोच विचारी। रतन जन्म अपनो तय हार्यो, गोविंद गत नहीं जानी, निमिख न लीन प्यो चरणन स्यो व्यर्था और सरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नौमा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन शरण तहा तुम पर रे रहो। वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही ओ मैं धर रे। पावन नाम जगत मैं हर को, सिमर सिमर कम सर सब हर रे। मानस दे बहर न पावे, कुछ अपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाय करुणा।

मन फूलो माया कर जाए, काम विरोधु रहे न ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए, है वर गैवर कंचन सुतनारी, ओ चिंता पिड़ चले हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो सची पए विकार, हरख सोग उबे दरबार, सुख सहजे जबर दे मरार, नजर करे तामेल मलाए, गुण संग्राहे औगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, बिन नामे सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लखयास, मन चंचल तावत मन तावे, साचे सूचे मेल न पावे, नानक गुरमुख हर गुण गावे, गौड़ी गुआरे दी महला पहला, होमे करतै न सुखोए, मनमत झूठी सच्चा सोए, सगल भगूती पावे दोए, सो कमावे तुर लिख्या होए।

बल राजा माया अहंकारी, जन करे वो भार अफारी, बिन गुर पूछे जाय प्यारी, हरि चंद दान करे जस लेवे, बिन गुर अंतर पाए अपेवे, आप भुलाए आपे मत देवे।

हेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सह सुभा मद कीट महासा हर लैन के विकासा देत सिंगारे बिन भगत बयासा चंगा समचा संसारे रक्त बीज काल नेम बदारे देत सिंगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत सिंगारे गुरमुख साज भगत निस्तारे बूढ़ा दर्दो जन पत खोई राम न जान्या करता होई जन को दुख पचे दुख होई जन्मे जे गुर शब्द न जान्या क्यो सुख पावे परम फुलान्या एक दल भूले बार पछतान्या कंस के डाउर न कोई राम न चीन्या अपनी पत खोई बिन जगदीश न राखे कोई बिन गुर न मेटिया जाए गुरमत धर्म धीस है नाए नानक नाम मिले गुण